0: Akasbani Imphal ngangbam ngan thoina pau pa jari ahan bada maru oiba pau security force ki operation da khusu khulai ka yauna lal hoba ani phare sitting tarama pan leigada ba sangsad ki nongjom mi pham ngasi dagi haurogani mi pham asi da tonga tongan ba bill ka puthok duna khana duna pass tawna bo hona ga dauri amasung spain na fifa world cup lisungni kuntaruk laure Imphal East Zila ki Hengang Police Station ki manung chanba maiba khul gi singkhong da security force ki kangbu amana ngarang thi bomb gi thabak chathaba da bomb yauna khusu khula kya phagle phaglaba polam sing gi manung da 12 bore single barrel nongmai ahum magazine yauba SMG carbine ama 9mm pistol ama 0.32 pistol ani lethot cell ahum Chinese hand grenade ama wireless set na jingba yauri police ki pawa sina makha ta na hai ककसिंग जिला की वांगू पुलिस स्टेशन की मनु चन खोंग्याम मखा लेकाई सोरेपा की हक्सिन मियोनी है कादर अमा महा की मयूम दगी सेक्यूरिटी फोर्स ना फारे चांदेल जिला की मोलसाम पुलिस स्टेशन की मनु चन इंडो म्यांमार परिंग गंफाजोल विलेज एरिया दगी के वाई के एल की मियो अमसु फारे मियो एसीदगी AK-47 राइफल अमा याउना आते पोलम खरा फागले हायरी अमरोमदा चुरासानपुर जिला की संगाईकोट पुलिस स्टेशन की मनु चन मोंगलाम एम टी गेलताम अमसुंग एम गमगाई खुल सिंह द आइन कायना युगौ सूलब सिंह सेक्यूरीटी फोर्स ना मंगहन ताखनख्रे मफम अदुदगी 12 बोर की नोंगई अहम सुफागत पंगमखि सेक्यूरीटी फोर्स की ऑपरेशन अदुदा युगौ लिटर लिसिंग अमा चमगा यांखै यस केक यस पाउडर हबलम बस फुचा मनि फुतरुक अमसुंग पुमथा हलब सिंह बेग चाम कुन मंगहन ताखनखि मणिपुर पुलिस साइबर अवेयरनेस वीक कमरी लेना सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सिंधु नसेउल अमचुपना जिला असिगी तोंगान तोंगान स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंधु सथरखिबा साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम लोसिनख्रे अमरोमदा कम्युनिटी पोलिसिंग प्रोग्राम की सरुक अम ओइना नोंमगी ओइबल लेमना लायंगबगी केम अमंगरांग खाबैसुइद लेबा तरेत सुबा मणिपुर राइफल्स कैंपस द पांगथोख्रे केम अदुदा पुन्ना मियोय चनी हुंफुमापनदा जनरल मेडिसिन ऑर्थोपेडिक गमसुंग गायनी गमरी लेनाबा अनालायंगी खुदोंगसाब सिंह फंगहनखी मुख्यमंत्री इमनाम खेमसा नंगरांग न्यू दिल्ली द पांगथोखिबा बीजेपी की मिफम द सरुक याखी मिफम अदुदा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष नसिंग बा लुचिंगबा क्या सरुक याखी मिफम अदुना दोल असी ग्रास रूट लेवल द निंगथिन मपांगल कनखर हनबा मदि मियामगी सेवा निंगथिन तौबंगमनाबा वाफम क्या खनखी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी संसद की नोंजू मिफम असिदगी हौरगनी मथंग थागी तराहुमदै फाबो सथगदबा मिफम असिदा पुन्न सिटिंग तरामापन लेगनी मिफम असिदा बिल केया पुथोकतुना खनाबगलोइनना पास ताउना बहोनगनी ngasi ahoba numita lok sabha da supreme court number of judges bill lisingani kuntaruk aduga rajya sabha da na prevention of insults to national honor amendment bill lisingani kuntaruk puthoktuna khanagani bill singasi ki mathakta registration of births and deaths amendment bill income tax amendment bill माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी कुंतरुंग नसिंबसो मिफम असिदा पुथोकतुना खनरब याय अमरोमदा संसद की नुंगजु मिफम निंथिना पांगथोकपदा मतेंग पांगबिनाबा केंद्रगी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना विरोधी दोल सिंगदा अपील तौरी न्यू दिल्ली दा संसद की मिफम की मांगोइनाना राजनीति दोल पुमनामकी ओइबा मिफम अमा पांगथोकलाबा तुंगदा पाउमी सिंगदा वांगांगबदा श्री रिजिजुना हाय नुंगजु मिफम असि निंथिना असोय अंगाम याउदना पांगथोंगना बहोनाबदा राजनीति दोल सिंह की चाव थौदांग गणतंत्र बु हेन मपांगल कंखर हनब होनबद वहनथोक खन नईनब मरुओब हिरम सिंह कंस्ट्रक्टिव खन नईनब की तंगाइफदब राजनीति दोल पुनम की मिफम केंद्र की गाक्सल मंत्री राजनाथ सिंह सभापति पांगथोखिबने अमरोम मिफम हेक हौरपग इलेक्शन कमीशन खंगद्रीब नेशनलिस्ट सिटीजेंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI बु राजनीति दोल सिंह अपुन मिफम सरुक यहानबू यानीदब फोंदोक्तुना कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी DMK आम आदमी पार्टी यौना विरोधी दोल सिंह मिफम यौदना मपान थोखी हौगदरीब संसद की नोंजू मिफम मांगोइनना लोकसभा की अध्यक्ष ओम बिरला सभापति ओइदुना बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मिफम मंगरांग पांगथोखी नोंजू मिफम असिदा सरकार ने पुथोकदब तोंगान तोंगानब आइन सिंह अमदी खनगदब बिजनेस सिंह की मतांगदा सरकार की महुत सिंधुने यावरीब महुत सिंह अमदी तोंगान तोंगानब राजनीति दोल सिंह की महुत सिंह ने पुन्ना खनखी ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯝ ꯕꯤꯔꯂꯥꯅ ꯁꯪꯁꯗꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ 2026 ꯂꯧꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯌꯣꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 1-0 ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯟꯖꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯔꯥꯟ ꯇꯣꯔꯦꯁꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯏꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯦꯂꯤꯌꯥꯟ ꯑꯝꯕꯥꯄꯦꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯟꯖꯜ 10 ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯟꯖꯜ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯕꯨꯠꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯔꯣꯗ꯭ꯔꯤꯅ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯕꯣꯜ, ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯎꯅꯥꯏ ꯁꯥꯏꯃꯟꯅ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯆꯍꯤ 17 ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯀꯨꯕꯥꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯥꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ 1998, 1996 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ 2010 ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯑꯃꯨꯛꯂꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯂꯧꯕ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ, ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ, ꯑꯦꯗꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ SCERT ꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯀꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯖꯤꯑꯣꯐ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯁꯦꯝ, ꯀꯣꯁꯦꯝ, CBSE ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ, ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯕ꯫
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ꯫ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯇꯔꯨꯛ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ NIA ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯍꯥꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ SIR 2026 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯔꯣꯜ, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ SC ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯚꯣꯇꯔ 738 ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ CMC ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ MPCC ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯊꯤꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯤ ꯊꯝꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯣꯀꯦꯟ ꯑꯃꯥꯛꯆꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯀꯂꯝꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯗ꯭ꯌꯛꯁ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯁꯩꯇꯕꯇꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯜ ꯁꯣꯟꯕꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯋꯤꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯇꯃꯦꯔꯨꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯑꯥꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 1-0 ꯊꯣꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯒꯥꯟꯐ꯭ꯌꯨꯃꯦꯜꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯧꯁꯦꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯖꯦꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯝꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯜꯍꯧꯕ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯇꯤꯡ 17 ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯁꯪꯁꯗꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ 2026 ꯂꯧꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
2: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯏꯕꯦꯊꯣꯏ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯏꯁꯩ꯫

0: ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯦꯟꯗꯣꯂꯤꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯔꯦ, ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯁꯣꯡ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑ
1: किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है, ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
4: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
5: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
4: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और

0: सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना

माघी पारी मंगाल नाई नंगा लंबा खोरव मासु ताकरे दो सिंगना मामलाबा वांगले नसीदा लाई भक्ति न तंबीरम लबी मैं तैसनु मखाऊं अंबियाईगी वकलगी अतियाद दी Ting sing bagi nong thang na ting laga mangal na yak lido. Imagi pari ati yada tagup ngaliba tawan maragasida.

0: नहीं बुआ रहा हूँ नहीं एंगली बरा इमागी पारी इमागी केंग दूंग अंबा
1: मसाई भी माँ मसाई भी माँ ननाई ऐ योग जरकली मसाई भी मन तक पी बा लाइक कर मेरा गम नमक पुजरकली मसाई भी माँ सीधे ले जरे
0: नसीगी नुमित असीदी मापोग लंगों सी मदा अकाउ पर ऐ चल लरोई तबा ऐहिंगनी कदाय सुमांग मथाउ बुंगा सीधा पुजेम लाओ कदाय ऐ कट के मरम अवाले पाकता इचागी आई भी मिरेल ना मामा ऐ बुनिंग सिंग दुना कोई पाई पाई दुना लयम गदा बदो मदोगी दमा कोई रही लम्दा मसीदा मेरा से मामा इना कली बने
1: मजाई बे माँ कली गिनी ना पारी ओए बा महाक ना सिन भी कबोले पाकता याई भी थाकरी बदे
0: सिन भी मचाक कना ना सिंह था नबी खिद्रा बसु पारी ओए बा महाक ना सिन भी ले पाक की दमक याई भी कट की बनी सागी थवाई आउद्रबा अक्चांग पोलांग दुपाऊबा ले रोल चन भी ना बा ले की दे मा पोक थी ना पोक रबा इचागी मराई बकदो मामा आई ना सेम की बने
1: मजाई भी मा ना पारी ओई बा महाक तो हवानिंग थोगी मा पारी नी हाई बदाई
0: मानी अचुंबनी पोम की बदी पोईरे मैं तै लंदम सिदनी लैसा तम की बना सिन भी ले पाकतनी असो पिसा खाई न पान बा ताई बंग मा पोक असीना पारी महा की लंगोन बु मैं सा लांग न पिकम न हन की
1: जाई भी मा
0: लाओ संगाई नुंग दस अंसी लाओ नसीगी मिचेल खांग लगा दबा अहिंग असीदा नंगोंदा हुआरी असे

ताबीरे एकेन रतन सुबगे मयेकता ओइनाम चंचन्ना सैसकलिबा मतमि सयमा आकाशवाणी इम्फाल हौजग मुक ताबीरसे मणिपुरी फिल्म इसई सिंह मथंग मथंग ओइना खुदोगी अहानबद तामिनसे इंगा नोंगलकता फिल्म असदगी रोशिबिना अमदी सदानंद अनिगे अपुनब खोंजेलदा रोमी मैतैने सेरेंगबा तोंब थांगजमना सैरांगबा फिल्म इसई

0: अम्बेडकर और रतनमाला जी का।
1: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
1: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
1: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
1: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओ अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे

0: मिलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं?
5: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
9: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
9: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
9: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का

0: आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा
5: रहा है।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

0: पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।
1: वत्स श्वेतकेतु,
2: आज्ञा दत्त।
1: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
2: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
1: मैं समझाता हूं
2: जी।
0: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।

0: श्वेत केतु। जी पिताजी। क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसि कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि,
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: तबीरे NCERT की तेंगबंग लोइन संदोक्ष पथौरम उमंग।

पुष्परानी न सक्पा आरके मेमसा न सैरेंगबा अयिक वलाई फिल्म की सही तहन जबगलोइनना फिल्म मेकर अमदी म्यूजिक डायरेक्टर ओकेन अमाक्षम की फिल्म सिंगदगी लोखचबा इसै सिंग लानथुकचबा मतांगसिद लोइचरे तबिरिबासी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगिने चैनल असिदा हौजिक अमुक तबिरसी पुखरम्बम ओंबी इबेथोई देवी अमदी कांगुगी खुबाक इसै

0: ꯇꯧꯒꯗꯕꯃꯈꯩꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯎ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯔꯤꯖꯨꯠ ꯘꯣꯁꯥꯜꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯪꯗꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯊꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤ ꯆꯦꯅꯨꯡ ꯃꯄꯩ ꯑꯗꯨ ꯖꯕꯥꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯪꯂꯨ ꯂꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯔꯤꯖꯨꯠ ꯘꯣꯁꯥꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯒꯜꯂꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯈꯪꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯦꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯝꯃꯤ, ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯨ, ꯑꯗꯣꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣꯗ, ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗꯤ ꯁꯝ ꯉꯧꯔꯛꯂꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯊꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯍꯟꯅꯤ, ꯑꯩꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ, ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯥꯟꯕꯤꯔꯕꯅꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤꯖꯨꯠ ꯘꯣꯁꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ, ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗꯅ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕꯅꯤ, ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯝꯅꯤ, ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯦ, ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯅꯦꯇꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯒ ꯊꯦꯡꯅꯩ, ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯔꯕ ꯒꯣꯈꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯎꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯪꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯦꯡꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯎꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯣꯏ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯇꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯟꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯠꯃ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯕꯥꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯌꯔꯔ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: ꯅꯃꯁ꯭ꯀꯥꯔ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯦ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯥꯊ ꯃꯦ ꯖꯥꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁꯔꯃꯥ। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत,

0: कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
0: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
6: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

आज फौजी भाइयों की सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे। आइए ये पहला गीत सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। आवाज़ दिया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना शैलेंद्र के हैं और सुरों से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

फौजी भाइयों के लिए अब प्रस्तुत हैं गाइड फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है एस जी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं अजनबी फिल्म से किशोर कुमार के आवाज़ में एक गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है आरती बर्मन।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ जिसके कंधे पर।
2: फौजी भाइयों, अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कंगला चैनल से कार्यक्रम भूले बिसरे, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी।

आइए अब सुनते हैं कटी पतंग फिल्म से एक गीत। आवाज़ दिया है किशोर कुमार, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है आरती बर्मन।

0: फौजी भाइयों के लिए अब प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में एक गीत। फिल्म का नाम है जानवर। गीतकार है हसरत जयपुरी और सुरों से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।
1: कभी हमने नहीं।

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

0: मदरसे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर पिघल जाएगा।
1: आइए अब सुनते हैं कन्यादान फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत। गीतकार है नीरज सिरिधर और सुरों से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी इम्फाल जु तेलिश आंगूताकू रे पुम विशो जहाँ आखाई सुलै कभी जुदू कलुशो रे दुशो तेल हाई हिंदो हल मई वही वही निखाई

आकाशवाणी इम्फाल इचु चक्रम हुंदा पोंगो हैफेम कैकुटे माउमे चो सबु सथुता रेओ माउ चो सबु चक्रपी को निक्रमे थपथे थले चिक्रो चिलो काइस इलोपिवे इजोजी कुटु कदले हि ए आदर्श उमुन जोकु लो जोकु चो कुटु दा खेतवा चोरा इक्रमे नो इजोको माउला लेनो चक्रलेशे आकाशवाणी इम्फाल इजोको अखाकाई खोफुजेनो प्रोपिले अचिमो उचिर कोकोदुनो नोने डिस्ट्रिक्ट लेही मजाजे दे कोब्द शोजे उबुली लेनो उजी अपो कोक्रो ए उजी उमी मी कुचो का दियो बे नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबम लिजी ले अवांगखुल लुआंगचुम पार्ट वन इनु कल्या अवांगखुल लुआंगचुम पार्ट टू इनु कोलेनो लिजी उमी मी ताट्यो हेलो सिटी नोने डिस्ट्रिक्ट ले कुबु कोरर खुही अताची ओदोलेनो उजक्रबे ए उचिचिलो इ कोमोदुनो मैख्रोमेनो वकु ताप्राकुचुही खैशोबे इदोचिथु नागालैंडले मोन टाउन हे कुबु डिफेंस कॉलोनी ले उजि उमी मिमाशिक कोक्रोलेनो उचिते कली सुमाशिउते उमै कली थेते ए ओनामै कली कोपेलोटिया मोलोटो खेप्रोबे कथेफे हि निलोटे ए कुलु चिकु कपी उमुनो कुलु चिकु कपी ओवो सत्य सो सौ बे अना उचिर मशिशो वो कुबुदनो सत्य सो ओवो हि सोलो रोबे तो पुलिस तानो पे मनी पे ओना जी चीजो को सो मशियोते ए उमे चीजो को अमजे अतची का दिलोते टिचो सुप्रलोमो बे उमी मिक्रो कोलो उबु हे हि पुलिस मई आर्मी स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स कल्या पहले वॉलंटियर मैनो सत्य सो कुल्लू चिकु कपी ओवसो बे गुवाहाटी ले खरगुली हे हिया इडो चिठु उमी मिक्रो मशी कुटु लेनो स्कूटर चोरो तक्रो कोपेलोटे अना उमाय कथे को हो हियोली का देमो आइटो ऑफिशियल ओको लेनो मुस्सु प्राप्ये ताकुटु चिठु कोस्सु पद्दे अचेमो उचिर मशिशु कुचु दुनो उजी उमी मी कुटु ही प्रचे ए गुवाहाटी ले उबु टिकाली ले ही उज अदोलो बुए उमी मिक्रोकोलो उबु हे ही स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स उमुनो कठो तवोलोवो कुलु चिकु कुचो ओवो ए अपोकोक्रो ख्रु समुथु कुचो ओवो सोपिए उमय कालिको तक्रो कोपेलो कोमोदुनो राकुई श्वेतो गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल जुनमोनी देकानो पेमनी पिए उजी उमी मी कुटुदनो ओवोसोथो कुबुही डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले ऑफिशियल मई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कल्या डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस क्रुनो सत्यसो कोलेपियो बे जम्मू काश्मीर ले हे उचिर मशी कुचुदनो इदो राजौरी एपुंस डिस्ट्रिक्ट ले उज्जजी प्राकुलो ए उजी उमी मिक्रो कुचोलेनो उमै चकलियु थेते ए उमै चचा फम हो बे उमय क्रैक्टर कुल्लू लोवो ओके कई उबू लखी सबोचे हेदो अमजे अतची कदे कुलोदुनो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नो

सानौजम अनिल सिंह शिक्षा फोन ताब फंबीगनी मतमीसै की खुदो लांथोकचगनी आयोगी पुनीपाल मिनीनी फुचप मतमदा तोंगान तोंगान बफोंगी सैसिंग संदुकचगनी आयोगी पुमापल ताब मतमदा पुमापल मखाई संदुकचगनी ngaikho tha kisi मतमीसैम फंबीगनी आयोगी पुंगतरा सैसकदब सिंगदी तखेल मयुम नरेसमदि मयांग लंबम शुभदनी देवी मतांग असीदी थमजरीब थौरमी हयेंगी सत्थजरकदब थौरम सिंह समलम निंग सिंह जब लोजरी।

0: करो।
1: प्रदीप,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कई दिनों इसी दया मना ना।
6: दासिंग कई का एचआईवी टेस्ट तो रुके तो हुआ।
5: कई दिनों नवानी दिया एचआईवी टेस्ट तो दोई दे।
6: इबानी लो हों मगी अहन मसेन है ना करे। अदा इबानी एचआईवी टेस्ट तो उसे ना है ना रंबा।
5: नवानी दी यंग कुई रे दाइने खंगना रख पा। अदुगा कई दिनों एचआईवी टेस्ट तो दोई दे। नवानी की से अमना अमबु याम थाजन अदा भाई वानी ने।
6: अदुई न तेदा HIV test tok tok tu na HIV lei na traga lei te na khang to phai ba sa yam na phaba thabak ni masi hakjang phana lei ba amadi akhoi ani gi tung gi pinsi gi damak ni aduna HIV test tok du na isagi HIV status khang to phai ba sa routine health check up gi saru amo hela da ba ne
5: aisu HIV test to tok tok ni nge du da kai hum positive oi ra ga di mayam na khangoi dro
6: HIV test tok phai ba sa confidential ni aduga nangi test ki result da na mata da haido adu nang na AIDS ki maram da hena khangninga badi HIV helpline number 1097 da call to salo adagi aku pamaro loina khangani chalake ko
7: blood cancer maru ina acute lymphoblastic leukemia lying laba matung da cancer cell kaya yamni yauri khangdok naba measurable residual disease test asi north east ta ahan bo ina the blessed diagnostics na miyam gi damak tau jaba hojare blood cell lising tala gi manung da ama faw ba yau draga di miyo ya du MRD negative ni haina logani test asi gi mateng na kari gumba cell ama natraga ama dagi hena phanglagana MRD positive ni positive oirba miyo ya du treatment makha chathagani multiple myeloma MRD manipur da ahan bo ina hojare masigi mathakta WBC ka hena wangkhalak pa leina chronic myeloid leukemia si diagnosis taunana bagi damak BCR ABL mutation test thangai fadana taudaba yadi test asi manipur da ahan boina the blessed diagnostics ta tawzari loinana makhal kayagi hematology test sing su tawzari the blessed diagnostics porompath infal
8: universal friendship organization sajjal academy kemgi branch ki thaudang matam sang na pubiramba ulen bakha ngan ba haina thoidokna khangnaba elangbum so deba houkiba nongmaijing numita taibung panba thadokre universal friendship organization kemgi branch sajjal academy na awaba phungthuk chabaga loinana lakli basakol se numit july gi tang kulum doita mangani lehul thokle haina miyam da pauje lakli
9: EE maintenance to PHED na thadorok pa warol amagi matungena PHED gi ising seasonary ba miyamna July kontra ma thoi lesing ani kontaruk paubagi manungda all bill arrears amasung meter gi dues concern office ta lak laga verified tauraga thidok pina baning singjeri July kontra ma thoi gi matungda di thidok haudaba consumer sing gi details mayamadu online portal da verified taubada kudong chanaba upload tauragani haina su khangalagli
10: आकाशवाणी इम्फाल की थोरम सिंह अदुमन ताविरी हयेंग लेबाक पुक्प नुमित की अयुकी पुंग तरेट कंगला चैनल की खोंजल ना चोमदा फंगबिगनी अखनना पिथोरक पसिंग दे युम्फम ओइबे थोरम उतलम सी एकोई की थावना थोरम सिदा थोकचोम अंजेलिना देवी के उनदुना वरी शाबा उनबिगदबा युमनाम बाबलू थोरम पुथोकपा नोंगथोमबम रोमा मखल मथिल की कया आकाशवाणी फालना दोंगीदमक संदुक्तना तांजरी
11: हेलो कुंगंग
12: था खुदिंगे रोई बतांजा कुंगंग की थोरम द थमजबा हेलो कुंगंग लाइव फोन इन प्रोग्राम चटलीबो जुलाई था सिगी तांग कुनमंगा थांगजा नुमिदांगी पुंगतरुक मिनिट निफुदा संदोक चगनी
11: थमजरी बेहिरम फोंग ना नोरिंगै तांगकता लखत कदब सेक्शन थौरांग सेंग
12: एक्सपर्ट ओइन लेंगशिन बिगदबा डॉक्टर वाईखोम जितेन सिंग फार्म मैनेजर कृषि विज्ञान केंद्र थौबाल
11: मियामने स्टूडियो गी टेलीफोन नंबर 9362327078 कॉल तोबिदुना थौरमसिबु सरुक याबियु हेलो खुंगंग
10: तोंगान तोंगान ब मखल मथेल गी थोरम सिंह आकाशवाणी इम्फाल दगी संदुक तुने तांजरी हौजिक नुमिदांगी पोंग तरे मखाई तारे मिको खरगी मनुंग द मणिपुरी द पाओ ताविरसी

0: नुपीदी दी दमकते दिने नं करीब द्वारो नु आई फनब छ लगे तमो तो पे नब छ बात विको को मबु याम फबने चले चले
1: आई न मुंग द हाइदु ओरि छु हयिंग लमी लम खान न थिंग न बद मा नम खाइ रु सोप सोप न दने हेरा नुपा मसा ओइन पो लगा दुक याम न पांग द बहुन दि था
2: बसंता ऐ तुम थी
3: तमो
2: कहीं नो सुख नन थोंग लो ली थी
3: तमो लोन द बने सुम न सुम आसिन बने इतना चंग भी रोया नहीं तमो
2: ओ ऐ बसंत दी
3: तमो माँ दी लीला यिंग नहीं है तो ना सत्करे
2: आ फाइ फाइ फाइ पुन्सी ऐसी दी नों भादोक सुनो आई थोक दम ने किदाग ले रिमत्रा
3: ले रिये तमो ननाव तमो लाग त्री है तना साथ ही ngay जरमी नी
2: तुम थेन अते ही नुमित थक्तर शु ngashii है बिन नुमित शीम दी नयां भी यू थक्तर शु याया दम ने
3: तमो
2: कदा यू है रो
3: होई तमो ऐ ननाव है जरके
2: ngay को ngay को ऐ इतों द थक्प शुनु ngay दे जो वारी नुआई ना बंदंग इशू पेक अमित दिहाई रो
3: तमो वारो भी भैया दरे ननाओ दी याजरे तमो सुम थक पीरो
2: आय नंबु मरक मरक तो नुम पाई दाइन है
3: पाई पाई दिहाई बंदंग चढ़ी तमो नशी की नुमिसी में दी ननाओ यू पाजा दबा
2: याय काय दे मीगे निंग बपाम बदे ये लॉय
3: तमो
2: अदुबु तुम थिन
3: है भी तमो
2: नंग ऐगे कहना बम दिल ले रही है ऐना नशी है भी नुमिशी यू थकतना काटो की दे अदुगे नंग ना नशी है भी नुमिशी यू थकते नत्रा
3: असुमनी तमो
2: कदा यू दुबु थोरो सी मनिंगी लंपाक मचा सी दोइ फम मोजिलो याम फेन थकिंग सी दी
3: याये तमो दुदी तमो न मा हता थाबिरो ने
2: याये लाओ लो नन ग्लास के लो योरे को
3: योरे तमो लोइन सुरे
2: स्वाई सी दोइ फम सी ने
3: याने तमो मता सुसारे
2: हे हो निनी की थाजे शिशु लेथर मिन है
3: तमो निनी की थाजे से फजद्रा
2: तुम तीन फजे हाय गद्रा मी की थमोई कायहन ब मरो ले बिनी हाय गद्रा यहाँ पर हाय पम कंदी मशीन दे
3: तमो
2: यू है रो तुम तीन यू है रो
3: है जगत तमो, सीधा ले ले, पाइप लो तमो।
2: तुम तीन याम बना हाई गद बम दिल ले है।
3: करीनो तमो ऐसा तक पियो के दोगे।
2: याम बना हाई गद बाई बो, नुपी द अश्यंग बन नुशीब तमुनो, नुपी द ताज़ब तमुनो। नुपीदा अश्यंग बन नुशीबत थमवा नुपीदा थाज़ बबु एक थमब नुपादो मपुन सीधा निंग बकाई रोई द बगी वासुंगे लेते ना ओयु
3: तमो मधु दी मी मी की मतुंग इली हाय ताई
2: हाय सुमी नंग हाय द सुसुमी सुम्बु दी हाय दी पृथ्वी द लेरी बन नुपी कुदिंग मक्षी ऐने टेस्टो बुंगम बदी नत्ती दना
3: हाय तमो
2: अदु ऐन थेंगर पददी नुपी द अशिंग बनु शिव थमुबा नुपी द ताज ब थमुब नुपा यांब ममई द निंग ब काय हो बंगाक तने ए निनी की ताजशी ताक्र मालिन है उद्र

पैसा बलोई जे रे इपु आय बे मई बे मशना हल लेंग शिदो इपु आय बे मई बे मशना हल लेंग शिदो अशुम न ममोम लांगलेन मचा थुबी बे मई पु नाय ज हन बदोलाई रे मरे तमनि पाता राम मंगा मयो के मुरांगलम दम पांगलले इपु आय बे मई बे मशना हल लम दम शिवो कदा एवर बगे पु आय बे मई बे मशना हल इशोई पुन लाग

ताबिरे साइखोम लमजिंग ले में चनु न सकप मोयरांग साइड थोबिना कबोदगी लोई कारपगी मतांग अदोंगी दमक थोरम संदुक्चरी बसी आकाशवाणी फाल्गी कंगला चैनल ने हौजी कमोक आकाशवाणी फाल्गी कंगला चैनल द संदुक्चरी जीव सिंह लक्त के अथुई बोइन लौरीब मीय बै खोइना चलिब पुंसी खोंचत पुंसी खोंबिरोई सेमदना पुंसी की थौगाय सरुक यामिनरी नसिगी ओइन थमजरी वारिनी पुंसी खोंबुरगी कपल ऑफ द मंथ थोरमसिदा डॉक्टर काकोकपम मधुमंगोलमदी हौजम शांति प्रभाग उन्नदन वरी शाबा उनबिरिबी मेरीना ओइनाम थोरम पुथोपी थोकसोम रेनोबला

0: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीपाल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। मान्य सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
3: प्रश्न नंबर 1,
4: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ ये पहल

0: भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है, और अंग क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से देंगे? मोदी जी ने प्राण स्वयं लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन उपयोगी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
3: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगी अदम नथोरम सिंह ताविरी हौजी कमुक संदुक चेरी अदमना

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कहते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप खिलती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं और कभी पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते भी कुछ ऐसे ही मौसमों से होकर गुजरते हैं। पहली मुलाकात किसी बसंत जैसी लगती है, प्यार का इजहार बारिश की पहली फुहार जैसा, और इंतजार सर्दियों की लंबी रातें, और कभी कभी बिछड़ना बिल्कुल पतझड़ की तरह लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं मौसमों की और उन एहसासों की जो मोहब्बत को इतना खास बना देते हैं। शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, मोहब्बत का अगर कोई मौसम होता तो शायद वो बारिश होती। बारिश की एक खास बात यह है कि ये लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। खिड़की पर बरसता हुआ बारिश का पानी, गर्म चाय और एक हल्का सा संगीत और किसी अपने की याद। बारिश अक्सर पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। कई लोगों के लिए ये किसी खास मुलाकात की याद होती है तो कई लोगों के लिए ये किसी अधूरी कहानी। लेकिन बारिश सिर्फ यादों का मौसम नहीं है, ये एक नई शुरुआत का भी मौसम होता है। जैसे धरती बारिश के बाद महक उठती है, वैसे ही कई रिश्ते भी एक छोटी सी बातचीत से फिर से खिल उठते हैं, महक उठते हैं, ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के

0: मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगा, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, सर्दियों का मौसम हमें हमेशा अपने लोगों के थोड़ा और करीब ले आता है। एक कप चाय और धूप में बैठकर लंबी बातें या फिर किसी अपने के साथ कुछ समय बिताना या कुछ वक्त बिताना। मोहब्बत हमेशा बड़े बड़े वादों में नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। किसी का हाल पूछ लेना या ये पूछ लेना कि आपने खाना खाया या नहीं, सर्दी में गर्म कपड़े पहनने की याद दिला देना या बिला वजह सिर्फ हाल चाल पूछ लेना, यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, वो रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं।

दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता? कुछ लोग हमारी जिंदगी में लंबे समय तक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और पतझड़ का मौसम भी हमें कुछ यही सिखाता है कि कभी कभी पुराने पत्तों का गिरना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि नए पत्तों के लिए जगह बन सके। इसी तरह जिंदगी के कुछ रिश्तों का खत्म होना भी हमारे लिए एक सीख होती है, वो हमें आगे बढ़ना सिखाता है। मुझे पता है कि दर्द होता है, लेकिन समय के साथ इंसान फिर मुस्कुराना सीख जाता है। जैसे इस गीत को सुनने के बाद आप हल्का सा मुस्कुरा देंगे।

दोस्तों, अगर जिंदगी में सिर्फ बसंत ही होता तो शायद हमें उसकी खूबसूरती का एहसास नहीं होता। बारिश हमें धैर्य सिखाती है, सर्दियां अपनापन सिखाती हैं, और पतझड़ हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, और बसंत हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद देते हैं। मोहब्बत भी तो कुछ ऐसी ही है, इसमें खुशी है, इंतजार है, दूरी है, मुलाकात है, और सबसे ज्यादा उम्मीद है, और यही उम्मीद हर कहानी को आगे बढ़ाती है। चलिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं, हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 24,239 पर बंद हुआ. भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking an investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं अब आइए रुक करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया. हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2% की बढ़ोतरी हुई.
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावरग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े. खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7% and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9% and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ. शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ.
2: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला. निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली. ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं. अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है. तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है. निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा. तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी. और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे, 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
1: जी,
2: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
1: जी,
2: उसका योगदान सबसे ज्यादा है. एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
1: जी.
2: तो ये आज के बाजार में. और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई. और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पे हमने बढ़ोतरी देखी. तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े.
0: राइट शशि जी, वी आर टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स. PSU banks and private banks almost 5% of a difference. If you look at the PSU banks jumped 3% and the private banks dropped 2.1%, almost a 5% contrast. What accounts for that?
2: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net profit. And at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks. And that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
0: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: नमस्कार शिशिर साहब.
2: नमस्कार.
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया था मैंने ये एक्सक्यूट किया. सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट हैं, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं.
2: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है. और ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं. पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं आईटी सेक्टर्स की, जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा. तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है. लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने. यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं. आपका ये है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा. हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाए, तकनीक को अपना मालिक ना बनाए. तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो CEO हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा. तो मुझे लगता है कि AI को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि AI को साथ लेने की जरूरत है. इससे हमारा आपका कौशल्य बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे.
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं. सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं. और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है DR आचार्य की.
4: हाँ
1: जी, अपना सवाल पूछिए महोदय.
4: हाँ सर, मैडम, मेरा NPS में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, पैसा लगाना ठीक होगा?
2: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है. जब आप सेवानिवृत्त होंगे, वहां पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा. आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा. सरकारी क्षेत्र में भी पहली जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी. तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है. एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए. चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं, और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेटर किसी हमें पैसा लगाना चाहिए, और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो ललित लगी है तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, ईरान और अदर अरब क्षेत्रों में। तो आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा से बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट अगर हम प्रसाद रास्ता बताए।
2: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो युद्ध, शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
0: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते हैं।
0: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसैंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
6: मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं।
1: जी,
6: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
2: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है, और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
1: आगे बढ़ते हैं, प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा। ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है, जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। आशीष जी

0: WPI का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, CPI की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ है। और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है। यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
1: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
2: Ji, namaste, sir.
0: Namaste.
2: मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने बैंक में पैसे लगाए हैं, हाँ सर?
0: जी जी।
2: तो इसको जैसे PPF का पैसा तो सरकार देती है, तो इसको बैंक देगा या सरकार देगी? और ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा पैसा, ज्यादा करवा दिया तो?
0: कांता जी, दो बातें हैं। जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं, वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहां पर फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
3: शिशिर दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
4: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
0: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है। आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर है वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, इसमें से कोई भी एक जानकारी दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
1: शिशिर जी, वन question we which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
0: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are is there that why there the number is so encouraging? Why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending? One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good. In the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means that companies are able to sell their produce outside. Now, the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is, of course, on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number, and then the consumption number.
3: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते
5: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष

0: पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
1: कौन सी पॉलिसी आपने टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
0: संतोष
1: पॉलिसी।
0: हाँ पोस्ट ऑफिस का है संतोष पॉलिसी, इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस हो या
1: अच्छा अच्छा ठीक है।
0: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41। तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा। तो सर वो 2 लाख के इंश्योरेंस बता था प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए।
1: Okay.
0: 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं। और एक और सवाल है
1: जी,
0: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
1: जी,
0: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर।
1: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता, बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहाँ आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। हाँ यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है। रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है।
2: Yeah, moving on to crude now. The global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the U.S. could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji. On crude.
1: The problem we are facing at this moment is there is still a lot of uncertainty. Mm-hmm. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. Mm-hmm. On the other side, when you hear US president, he has his own way of explaining the thing. So at this moment, today you will see, I mean, as you just mentioned that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
2: 0.8%.
1: It was $87 a barrel. Mm. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
2: Right. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
3: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,41,754 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की बढ़त के साथ 2,19,233 रुपए पर चल रही थी। शिशिर जी, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी आपसे सोने और चांदी के भाव पर।
1: देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई के बीच में सोने चांदी के भाव में गिरावट आ रही है, ये कई बार लोगों को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से, जब जब डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा।
2: राइट
3: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद,
2: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर, एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन, एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। आई एम निशित कुमार अलॉन्ग विद माई को एंकर प्राची प्रिया, सेइंग गुड बाय।
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की, इस बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्की से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने में के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही मौसम बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with the obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father, Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Vikasit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Maresi Sfant in Chisinau. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Aca Vasquez in New Delhi yesterday. During the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions including advancing trade, business development, maritime health, agriculture, education and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora. Earlier, External Affairs Minister expressed confidence that the visit of Panamanian Foreign Minister Javier Eduardo Martinez Aca Vasquez will further strengthen bilateral ties across all sectors. Supreme Court has directed the Union Government to constitute a committee within 2 weeks to frame uniform guidelines governing the post-retirement facilities to be extended to retired Chief Justices and Judges of the High Courts across the country. A bench led by Chief Justice of India Suryakant directed that the committee shall be constituted in 2 weeks and submit its recommendations to both the Union Government and the Supreme Court within 3 months of its constitution. In Sikkim, at least 25 people have been trapped inside NHPC's under-construction tunnel in Namchi district. Efforts are on to rescue them. Namchi SSP informed that NDRF and local agencies are making all efforts to rescue them. However, due to leakage of gas, the trapped persons are yet to be evacuated. There was a report of gas leakage following the collapse of the tunnel. The incident occurred under the Memrang police outpost. Senior officials are constantly monitoring the situation on the spot. In Jammu and Kashmir, 4 more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division yesterday, taking the death toll to 16 in the past 2 days. At least 7 people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Poonch districts. Chief Minister Omar Abdullah has announced

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूँ राखी आपके साथ।

कर्ज फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत से दूर रहने की हिदायतें तो सदियों से दी जाती रही हैं, मगर इश्क कब किसी नसीहत का मोहताज रहा है। दिल जब किसी की आहट को अपनी धड़कन बना ले, तब दुनिया की हर सलाह, हर दलील और हर रोक बस एक आवाज बनकर रह जाती है। आखिर इश्क के मामले में कौन किसी की सुनता है, या तो दिल ही फैसला करता है और वही अपना अंजाम भी लिखता है।

डिस्को डांसर फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत भी दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वो लम्हे, वो बातें, वो एहसास जो कभी मेरी दुनिया थे। कुछ रिश्ते भले ही वक्त की धूल में ओझल हो जाएं, मगर उनकी महक उम्र भर दिल में बसी रहती है। तेरे प्यार की वही खुशबू आज भी मेरी यादों में उतर आई है।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया पप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

बजकर 35 मिनट और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत

बातों बातों में फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कभी कभी मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती। दो निगाहें मिलती हैं, दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और बिना किसी इजहार के एक रिश्ता जन्म ले लेता है। यही तो प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप है, जहां खामोशियां भी गुफ्तगू करती हैं और बिना कहे सुने ही दिलों की बात हो जाती है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गजल सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अमीर मीनाई ने इसे लिखा था और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपने इस गजल में एक बात महसूस की, यहां आहिस्ता आहिस्ता इस शेर की जान है, यहां जल्दबाजी नहीं बल्कि उस पल को जीने की रवानी है जहां हर नजर हर मुस्कान और हर झलक अपने आप में एक मुकम्मल कहानी बन जाती है।

कभी कभी हिंदी फिल्मी गीत प्रेम की उस पहली हलचल को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर जाते हैं कि शब्द सीधे दिल में उतर आते हैं। शायद यही वजह है कि ये गीत सुनते हुए महसूस होता है कि सच्चा प्यार जब दिल को छूता है तो उसकी खुशबू सिर्फ यादों में नहीं पूरे वजूद में उतर जाती है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे नक्श ने लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:52 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इतने प्यारे गीतों का साथ हो तो नींद भला कैसे आए। हर नगमा किसी याद को छेड़ देता है, हर धुन किसी एहसास को जगा देती है। ऐसी रातों में आंखें भले ही जागती रहे मगर दिल सुरों की चादर ओढ़कर एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़ता है।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 से आपने गाना सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी वीर जी शाह ने। गीत सुनते सुनते जब नींद आंखों में उतरने लगे तो लगता है जैसे सुर लोरियां बन गए हों। हर धुन धीरे धीरे मन को सहलाती है और हर शब्द सपनों का रास्ता दिखाने लगता है।

मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, क्या खूबसूरत एहसास है इस पंक्ति में। कभी किसी की याद, कभी किसी का ख्याल, तो कभी कोई प्यारा सा नगमा। कुछ तो है जो रात भर आंखों को जगाए रखता है। नींद आती भी है तो ठहरती नहीं, जैसे किसी ने चुपके से उसे अपनी हथेलियों में समेट लिया हो। पूजा के फूल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। हर रात चांद तो अपने वक्त पर लौट आता है, मगर जिसका इंतजार हो उसके कदमों की आहट नहीं आती। फिर भी दिल उम्मीद का दिया बुझने नहीं देता, शायद अगली चांदनी रात के साथ वो भी लौट आए, जिसकी कभी हर उजाले को जिसने कभी हर उजाले को अधूरा बना दिया था।

पतिता फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 1 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आपने सुना शबाब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। इश्क की दुनिया में आशिक अपने महबूब से जुड़ी हर राह, हर गली, हर याद को अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा अजीज मान लेता है। यही वजह है कि ऐसे गीत सुनते हुए हमें एहसास होता है कि मोहब्बत का असली रंग पाने में नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से महसूस करने में है।

कभी कभी रिश्तों में कोई गुनहगार नहीं होता, बस हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां दोनों तरफ दर्द होता है, दोनों तरफ इंतजार होता है और दोनों तरफ अनकही बातें रह जाती हैं। ऐसे गीत हमें सिखाते हैं कि हर बिछड़ने वाली कहानी में एक ही दिल नहीं रोता, कई बार दोनों ही अपने अपने हिस्से का गम चुपचाप जी रहे होते हैं। आपने सुना कुंदन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने।

रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने। यादों की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है। हम समझते हैं कि वक्त ने हमें उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर किसी शाम की खामोशी, किसी हवा के झोंके या किसी पुराने नगमे की धुन उन्हें फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है।

जब से तुम्हें देखा है इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया दत्ताराम ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. Social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior and despite repeated warnings and lawful directions, refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi Police said protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles and resorted to violence, posing a serious threat to public order. Police said during the scuffle, around 60 protesters were also reported to get injured. It said about 70 protesters have been detained. Appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. The Ministry of Law and Justice has released the draft Advocates Amendment Bill 2026 for stakeholder and public consultation. The draft has been prepared in consultation with the Bar Council of India and has been placed on the Bar Council's official website to invite comments and suggestions. The ministry said that all stakeholders, including members of the public, can submit their comments and suggestions on the draft bill to the Bar Council of India and the Department of Legal Affairs by 31st of this month till 3 p.m. In Himachal Pradesh, all educational institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will be closed today in view of a red alert issued by the weather department, officials said. The Met Office has issued a red warning for heavy rain in Chamba, Kangra, Kullu, Mandi and Sirmaur districts tomorrow. According to the State Emergency Operations Center, 36 roads, including 11 in Mandi and 10 in Chamba district, are closed. Authorities have asked people to follow official advisories and contact the State Emergency Helpline 1070 or the District Emergency Helpline 1077 in case of any emergency. India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand and Odisha, Uttar Pradesh during the next 24 hours. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chattisgarh, West Bengal and parts of North India during the next 2 days. That is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कितनी सहज और गहरी बात है ये, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम कोई फैसला नहीं, एक एहसास है। ये ना तो किसी योजना का हिस्सा हो सकता है, ना किसी तर्क का। कब कोई मुस्कान दिल में उतर जाए, कब किसकी आवाज अपनी लगने लगे, और कब किसी की मौजूदगी जिंदगी का सुकून बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

जुर्म फिल्म का गाना आपने सुना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। देव कोहली ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद राज आनंद ने। जिंदगी हर दिन एक सी नहीं होती, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी परेशानियों की छांव। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है, एक ऐसा साथ जो हालात बदलने पर भी ना बदले।

लहू के दो रंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:35 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीजें कितनी भी संभाल कर क्यों ना रखी जाएं, वक्त, हालात या लापरवाही की एक चोट उन्हें बिखेर सकती है, लेकिन संगीत की खासियत देखिए, वो टूटे हुए दिल की आवाज भी बन जाता है और बिखरे हुए एहसासों को फिर से समेटने का हौसला भी देता है।

कुछ एहसास उम्र के साथ फीके नहीं पड़ते। तेरे पहले प्यार की खुशबू आज भी मेरी सांसों को महका रही है और हर धड़कन जैसे उसी अनकहे मासूम से एहसास का गीत गुनगुना रही है। फिल्म बदलते रिश्ते का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक जान है हम, इस फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 50 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमरा ही सुनेंगे कार्यक्रम आप पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद की मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior, and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi police said the protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles. The police said during the scuffle, around 60 protesters were reported to get injured. It said around 70 protesters have been detained and appropriate legal action is being initiated, and an FIR is being registered under the relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Vikasit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. The Supreme Court has asked the Uttar Pradesh government to apprise it about the possibility of setting up an SIT to probe the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya, and cautioned the litigants not to politicize the issue. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalia Bagchi and B. Mohan asked Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Uttar Pradesh government, to take instructions on whether the special investigation team, which had examined the entire issue before the registration of the FIR, could be entrusted with the responsibility to probe the case instead of local police. The apex court will hear plea again on the 27th of this month, when Uttar Pradesh government will apprise it about sit probe in the matter. In Himachal Pradesh, all education institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will be closed today in view of a red alert issued by the weather department, officials said. The Met office has issued a red warning for heavy rain in Chamba, Kangra, Kullu, Mandi and Sirmaur districts tomorrow. Authorities have asked people to follow official advisories and to contact the state emergency helpline 1070 or the district emergency helpline 1077 in case of any emergency. The Indian sub-junior men's and women's teams made winning start to their respective campaign at the FIH Youth Hockey 5S Asian Championships at 2026 at Muscat, Oman yesterday. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ और रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही। और अब मैं आपसे मिलता हूँ इन दो गानों के बाद और अजनबी मूवी के इस गाने से शुरुआत करते हैं और आप इन गानों का मजा लीजिए। दो गानों के बाद आपसे मुलाकात होती है।

समय के साथ पुरानी चीज़ों का स्वाद जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इन पुराने गानों का टेस्ट तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आराधना मूवी से लता जी और किशोरदा की वॉइस में ये गाना था, एसटी बर्मन का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। आधी रात की इस खामोशी में जहां आधी दिल्ली सो रही है, वहीं कई लोग जो है वो अलग अलग कारणों से जागकर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। कोई अपनी जॉब कर रहा है और कोई जो है कुछ और काम कर रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ आपको जगाए रखने के लिए आपके साथ बातें कर रहा हूँ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ, और पुराने ड्यूट्स गानों का कलेक्शन लेकर हमराही शो में मैं आपके साथ

इस पूरे घंटे। और देखिए एक चीज़ और भी मुझे बतानी है कि प्यार जो है ना वो किसी से भी हो वो खुशी ही देता है। तो इन गानों से मोहब्बत करने वालों के लिए सुकून की रात है। मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी के लिए दहलीज मूवी से महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में ये गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक मैं और एक तू मूवी से ये वाला गाना था। और देखिए, अगर बेकार की बातों में हम उलझे रहेंगे ना तो जिएंगे कब? जिंदगी बीत रही है और अपने पसंदीदा इंसान के साथ जो है वो खुशनुमा लम्हे बनाइए और उनका मजा लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई नो ये एक फिल्म का मैंने डायलॉग मार दिया, लेकिन बातों से ये जिंदगी तो देखिए हर दिन बीत ही रही है। ये जो टाइम अभी जो हम जी रहे हैं, ये टाइम जो है सुबह के 6 बजे तक नहीं होगा, सुबह कुछ और चीज़ होंगी। तो और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान हुआ तो सच मानिए ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं हूँ पंकज, आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। प्यार बांटिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है।

के इस गाने में विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की रोमांटिक केमिस्ट्री गजब की थी। और इस गाने में पता है एक लाइन आती है कि मैंने जिसे चाहा वही यार मिला रहे। आपको पता है कि इंसान ना तभी खुश रह पाता है जब जिंदगी जीने के लिए उसके पास उसकी पसंद का एक शख्स उसके साथ हो, और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए ताकि आगे जाके आपको इस बात का गिल्ट ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। एटलीस्ट ट्राई करेंगे, मिल गए सो ठीक है, बाकी तो किस्मत की बात है ही। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हमराही शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। समझौते वाले रिश्ते जो हैं उनको जोड़ने से बेहतर है कि पसंद के शख्स के साथ जिंदगी का हिस्सा बन जाना।

ये आधा साल बीत चुका है और समा तो मानो एकदम भाग रहा हो। वैसे हमराई शो का टाइम भी जो है वो पूरा होने वाला है और अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा। तो इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी कुछ मिनट जो बचे हैं उसके लिए आप इस शो का ये गाना सुनिए और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको लीगल जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों तथा बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन कम किया जा सके। और खेलों में ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel were sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, the Delhi police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior, and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi police said the protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles. The police said during the scuffle, around 60 protesters were also reported to get injured. It said around 70 protesters have been detained and appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. India has deposited its instrument of acceptance of the World Trade Organization WTO agreement on fisheries subsidies AFS yesterday, thereby becoming a party to the agreement. The Ministry of Commerce and Industry said that the WTO agreement prohibits government support to illegal fishing activities and over-exploitation of stocks, contributing to the protection of marine life. India is the 123rd member of the WTO to deposit its instrument of acceptance. The agreement focuses on subsidies related to marine wild capture, fishing and fishing-related activities at sea. Importantly, aquaculture and inland fisheries remain outside the scope of this agreement. In Himachal Pradesh, all educational institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will be closed today in view of a red alert issued by the weather department, officials said. The Met Office has issued a red warning for heavy rain in Chamba, Kangra, Kullu, Mandi and Sirmaur districts tomorrow. Authorities have asked people to follow official advisories and contact the state emergency helpline 1070 or the district emergency helpline 1077 in case of any emergency. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 24 hours. The Indian sub-junior men's and women's teams made winning start to their respective campaign at the FIH Youth Hockey 5S Asian Championship 2026 at Muscat, Oman yesterday. The Indian teams are placed in the elite pools of the men's and women's competition. And that is the end of this news bulletin.

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। शुरुआत करते हैं जीवनधारा फिल्म के इस गाने के साथ, SP बालसुब्रमण्यम।

आशा जी की आवाज में गाए हुए गाने। अगर तुम ना होते मूवी का ये गाना आपने सुना था, गुलशन बावरा के बोल और आरडी बर्मन का म्यूजिक था। आज 21 जुलाई मंगलवार है और मैं पंकज अरुणिमा शो में आपके साथ हूँ। देखिए, समय को भी ना थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मंगल परिस्थितियां बना सके, यानी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो जिंदगी को जी भर कर जीते रहिए और जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। खैर, अभी इन दो गानों के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, तो ऐसे ही इन गानों का मजा लेते रहिए और फिर से आपसे मिलता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल्ली में से मैं बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाणी जयराम की आवाज़ में गुड्डी फिल्म से ये गाना था, गुलजार के बोल और बसंत देसाई का संगीत था। जब जिंदगी में अपने दम पर लाख जतन के बाद भी परिस्थितियाँ सही ना होना, और तब हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है प्रार्थना में जो है वो बड़ा बल होता है जो असंभव को भी संभव कर देती है। बस प्रार्थना जो है वो सच्चे मन और अच्छी नीयत से होनी चाहिए, जिसमें किसी का भी बुरा ना हो। यकीन मानिए प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और पूरी भी की जाती हैं, इसलिए हर पल प्रार्थना करते रहिए, कुछ अपने लिए कुछ सबके लिए।

इस गाने की एक एक बात अब बहुत सच है, और पता है मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे समझाया है कि कभी भी किसी भी चीज़ का ना अहंकार मत करो, क्योंकि जो अच्छा आपके पास है उसे हमें ज़रूरतमंदों को बांटनी चाहिए। और ये बात सच भी है कि अहंकार जो है वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। अहंकार ने न जाने कितने लोगों को नष्ट कर दिया, इसकी ढेरों कथा कहानियाँ जो हैं वो हमें असल जीवन में भी देखने सुनने को मिल ही जाती हैं। इसलिए विनम्र और प्रेम से भरकर सबको सिर्फ प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं।

किशोरदा की आवाज में मशाल फिल्म से आपने ये वाला गाना सुना। और अब जो है अगले घंटे मैं पंकज भोर सुहानी शो में आपसे, यानी नेक्स्ट शो है ये, इसमें आपसे मिलूंगा, क्योंकि और बड़ी सुबह होने वाली है। वैसे तो अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाकर देखा तो अभी दिल्ली में जो है बूंदाबांदी हो रही है, यानी बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है और सुबह का नज़ारा तो होता ही हमेशा बहुत ही प्यारा, मन को खुशी देने वाला होता है। तो थोड़ी देर में सुबह 5 बजे से आप हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे और फिर 5:10 पर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। अभी ये वाला गाना सुनिए येसुदास की आवाज़ में, इस टाइम के लिए एकदम परफेक्ट गाना है फ्रॉम द मूवी हैसियत।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश के जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं पंकज आपके साथ इस शो में रहूंगा। अभी के लिए शुरुआत करते हैं दो गानों से, रामलखन फिल्म से ये गाना आप सुनिए और उसके बाद दो गाने के बाद आपसे मिलता हूँ।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में संगीत फिल्म से ये गाना था संतोष आनंद के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत था। बहुत ही सुंदर सी सुबह का नज़ारा दिल्ली का इस समय है और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा है हल्की हल्की बारिश हो रही है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 21 जुलाई मंगलवार का दिन दिल्ली शहर भी जाकर जो है अपने अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा है और जाना भी है भाई क्योंकि आज मंगलवार है तो काम तो करना पड़ेगा। मतलब अगर सैटरडे या संडे होता तो बात अलग होती लेकिन नहीं आज ट्यूसडे है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वैसे इन सबके साथ ना मुझे ऐसा आपसे एक बात कहनी है कि देखिए हम सबको पता है एक बात समझनी चाहिए कि जिंदगी बीतेगी और बीत रही है लेकिन इसे कैसे बिताना है ये आपके सकारात्मक एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो जब बिताना ही है तो खुशी से क्यों ना बिताएं, है ना। इन दो गानों के बाद मैं पंकज आपसे फिर से मिलता हूँ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो में। ऐसे ही सुनते रहिए।